हम सबने ये ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है। हम सबका है एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। स्वच्छ भारत का है जन अभियान, घर घर तक ये पहुंचे पैगाम। गली गली सड़क सड़क पूरा शहर स्वच्छ हो, एक अकेला क्या करे इसमें सबका साथ हो। स्वच्छ बने ये भारत सारा, घर घर में फैले उजियारा। सफाई का ये पावन अभियान, मिलकर बनाएं भारत महान।

भोजन अपना योग को जीवन का हिस्सा बनाए, एक दिन नहीं हर दिन योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इंटरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जोब को जीवन का हिस्सा बना, एक दिन नहीं हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जन जारी लोक।

इसके तहत 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। तीन किसान की किस्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,44,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ लोकप्रशा विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्र

0: zázrakne a to chváli, že to prišlo sa do papieti, že to bude to tak hrají. Vlastne je prečo aj veci, tí stále bolevali nik ľudí, ktoré prišlo sa tady a do vás to viatý mogli. Vtedy nie, nikto by skúpil sier, unke zvanili u tým dekáriu po hastantre, ktoré si prija Azandlej, or Bharat, or Afganistan, ktorý ich evidencie, ktorý ich som kľapa písma, or Antonov a Čenejde. Ať sa našal bez práce. Prihľadnosti na veľmi vody a asi odišiel od pašky Mongárky do Repadhe. A máme sa dva dáta na taká hekú prihľadnosti a z odišiaky majú bandu z rieky Pahadpúr v Gálmi Ráštopati Vrátovi Vodnosti unke asačne Ďalom Dnitaru Bhetkarege. Ráštopati od prihľadnosti Mirka Pevitro Santali Zohra od Tú Zohra Stolo per Tuzia Arcina Karenge od Stania Sikstia od Kvasa Vitaz Konstanoka Dora Karenge. Isté adivasi Sanudal ke Sosti Karenke proti Dejski proti Bobota Zahir Hogi. Isté bár Bono Leta Zahrenku ne ek Bore Sarvodani Karekrom ne Stanil Hongi Prihľadnosti 47,000 crore rupaye se adik ki Vikas Pariyojanao ka Udghatan Karenge aur Urja Parivahan Swasth Sikstia Sinchai aur Audyogik Bunyadi Dhanche जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नारायणपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार। पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कोलकाता में वर्ल्ड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्ध पोस्ट INS दिनोगिरी, INS संशोधक और INS अगर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे।
0: संदीप गुप्त के साथ काश्मीर महाराज आकाशवाणी कोलकाता। गृह मंत्री अमित शाह आज कोलहापुर और इशन करंजी के दौरे पर है। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोलहापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूरी बैठक में निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस का तथ्यों के विषय बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रूपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा फूड डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रूपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वर्षन ने कहा कि मिशन 1.0 ने जटिल उद्योग की मजबूती रखी है।
3: हजार से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटी छात्रों को छठ डिजाइन करना

0: भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही है जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स है। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल है और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती है।
1: वही भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 में निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियाँ कर सकती है। इस नीति के बाद भारत में एयर स्टार्टअप की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 800 से अधिक हो गई है। इससे विश्व निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
2: मोदी जी को देखकर प्रदेश टू सेक्टर रिफॉर्म इस देश की स्थापना और पहले स्टार्टअप में बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 84 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है जो सेटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: समय कंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉकड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूतियों और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारियों और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और खेल खबरें, भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। अहमदाबाद के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
3: धन्यवाद विश्वास। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, टेलीग्राम पर प्रतिबंध सहित। खुदबा को पता चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवया टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों की सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही घसनसुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली कमर। संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का यह बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद प्रणत। और अंतिम मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रूपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉकड्रिल। और SEBI ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार विभाग का यह समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश माधो। द हेडलाइन, President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stones for development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment from the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hubli in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agarwal appointed as Vice President of Financial Action Task Force (FATF), New Delhi reiterated its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors.

ये आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर है। मुंतहा फारूखी से इलाकाई खबरें सुनिए। पेश है खास खबरों की सुर्खियां। तरक्याफ्ता भारत की तामीर में हुनरमंदी, जिद्दत और सनतकारी अहमियत की हामिल, वजीर आजम का इजहार ख्याल। फौजियों की शुजात के शाया निशान दिफाई मकामी साजो सामान की पैदावार में इजाफे की जरूरत पर वजीर दिफा का जोर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज कोल्हापुर और इचल करंजी के दौरे पर। मुंबई में कौमी माइक्रोबायोलॉजिकल जांच तजुर्बेगाह का इफ्तिताह। नीट यूजी दोबारा इम्तिहान के लिए एनटीए की जानिब से व्हाट्सएप राबता चैनल का आगाज। और मरकजी हुकूमत के बफर स्टॉक स्कीम के तहत प्याज की कीमत में 80 रुपये फी क्विंटल का इजाफा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तरक्की याफ्ता भारत की

0: में ये तीसरा इजाफा है। आज से नाफिज होने वाले नए निर्ख के मुताबिक प्याज की कम अज कम इमदादी कीमत 17 रुपये 50 पैसे फी किलो मुकर्रर की गई है। शिवसेना का 60वां यौमे तासीस कल मनाया गया। इस मौके पर नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे ने अलहदा अलहदा इज्तिमात में अपने कारकुनों से खिताब किया। उद्धव ठाकरे ने सियासी जमातों में अंदरूनी इन्हराफ को फरोग देने और तोड़फोड़ की सियासत करने पर बीजेपी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कांग्रेस में शिवसेना के इंजमाम से मुतालिक खबरों की तरदीद की। बैनुल अक्वामी यौम योगा कल मनाया जाएगा। इस सिलसिले में कल मंत्रालय में योगा के अमली मजाहरे पेश किए गए। इस प्रोग्राम में माजूर योगा प्रैक्टिशनर अनवी विजय झांझरुकिया को चीफ सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल के हाथों एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर चंडीगढ़ में मुनक़िदा ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज योगासन मुकाबलों में कामयाब होने वाले महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का भी इस्तकबाल किया गया। योगा डे के सिलसिले में कल छत्रपति संभाजीनगर में भारतीय योग संस्थान की जानिब से योगा रैली निकाली गई। बीड़ जिले में कल मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमाई योगा प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। मरकजी तकरीब जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सुबह 6:30 बजे होगी। नांदेड़ में मरकजी संचार ब्यूरो की जानिब से योगा डे के मौके पर शिव मंदिर के ऑडिटोरियम में खसूसी प्रोग्राम मुनक़िद होगा, जिसमें योगा मजाहरे और सेहत व तर्ज जिंदगी के मौजू पर खसूसी लेक्चर पेश किया जाएगा। नीट का पर्चा अफशा होने के बाद खुदकुशी करने वाले तलबा के अहले खाना को 1 करोड़ रुपया हुकूमत की जानिब से इमदाद दिए जाने का मुतालबा कॉकरोच जनता पार्टी के सदर अभिजीत दिपके ने किया है। वो कल हिंगोली जिले के अपने आबाई गांव संतुक पिंपरी में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक मरकजी वजीर तालीम इस्तीफा नहीं देते तब तक एहतजाज जारी रहेगा। रियासत के गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए 15 अगस्त तक 4 घंटे का मराठी लिसानी गुफ्तगु कोर्स मुकम्मल करना लाजमी करार दिया गया है। महकमे ट्रांसपोर्ट के जॉइंट कमिश्नर रवि गायकवाड़ के मुताबिक मुकर्रा वक्त के सर्टिफिकेट न रखने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तमाम ड्राइवर्स से अपील की है कि वो इस मुफ्त तरबियत का फ़ायदा उठाते हुए बरवक्त सर्टिफिकेट हासिल कर लें। लातूर जिले की मुकामी क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए 12 किलो 740 ग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में मनशियात की गैरकानूनी तिजारत में मुलवस 2 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के 4 इंतजामी डिविजन्स में चंद मकाम पर बारिश का इम्कान है। ताहम कोकण और विदर्भ के बाद इलाकों में गर्मी की लहर जारी रहने का खदशा भी जाहिर किया गया है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में हुनरमंदी जिद्दत और सनतकारी अहमियत की हामिल वजीर आजम का इजहार ख्याल। फौजियों की शुजात के शायान शान दिफाई मकामी साजो सामान की पैदावार में इजाफे की जरूरत पर वजीर दिफा का जोर। मुंबई में कौमी माइक्रो बायोलॉजिकल जांच तजुर्बेगाह का इफ्तिताह और मरकजी हुकूमत के बफर स्टॉक स्कीम के तहत प्याज की कीमत में 80 रुपये फी क्विंटल इजाफा। इसके साथ ही इलाकाई खबरें खत्म हुई। इसके बाद हमारा अगला मराठी न्यूज बुलेटिन सुबह 11 बजे नशर होगा।
1: एफएम बँड 102 MHz श्रोते हो, आपण ऐकत आहात आकाशवाणी परभणी केंद्राचं प्रसारण। सकाळचे आता 9:10 झालेली आहेत। सदाबहार हिंदी चित्रपट गीतांचा लखलख चंदेरी हा कार्यक्रम आम्ही आता प्रसारित करीत आहोत। कार्यक्रमातलं सुरुवातीचं गीत ऐकण्यापूर्वी
2: पार्टी हवी
3: आधी चॅम्पियन बरोबर सेल्फी घेऊया। आयडिया इथेच करूया पार्टी,
2: पिझ्झा पार्टी।
3: येस, चल तुझं कार्ड आणि पिन दे।
4: माझ्या कार्डचे डिटेल्स स्वतःच टाकेन। आरबीआय सांगते आहे की आपला पिन ओटीपी सीवीवी किंवा इंटरनेट बँकिंग पासवर्ड कोणाही सोबत शेअर करू नका। ऑनलाईन बँकिंग फक्त आपल्याच कम्प्युटर मोबाईल आणि सिक्युअर नेटवर्क वरून करा।
2: बाय गर्ल्स, कुठे चालली आहेस?
3: ऐकलं नाही? नो शेअरिंग।
4: आरबीआय सांगते, जाणकारपणा सतर्क राहा।
5: तुम्हाला माहित आहे का जगातील 56% डिजिटल व्यवहार कुठे होतात? भारतात। जगातील सर्वात स्वस्त इंटरनेट दर कुठे उपलब्ध आहेत? भारतात। स्मार्टफोनचा एक आघाडीचा निर्यातदार म्हणून कोणता देश

0: सुबह के प्रोग्राम में आज आप समाप्त कर रहे थे भजन। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और सुभद्रा, अब हम इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करेंगे। आज है 20 जून 2026 और आज देश भर में मनाया जा रहा है विश्व शरणार्थी दिवस। बिल्कुल सुभद्रा, ये दिवस उन लोगों के साहस, शक्ति और संकल्प के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है जिन्हें प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा की चुनौतियों के कारण अपना देश छोड़कर बाहर भागने को मजबूर हुआ। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। सन 1858 में आज के दिन ग्वालियर के किले पर ब्रिटिश सेना का कब्जा और उसके साथ ही सिपाही विद्रोह का अंत हुआ। 1887 में आज के दिन मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनस बनकर तैयार हुआ। पहले इसका नाम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया पर रखा गया। 1996 में नाम बदलकर किया गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये 19वीं शताब्दी की विक्टोरियन गोथिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। 2 जुलाई 2004 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया और आज ये देश के सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से एक है। 1916 में पुणे में आज के दिन SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1998 में विश्वनाथन आनंद ने व्लादिमीर कैमनिक को हराकर 5वां फ्रैंकफर्ट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट जीता। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करते हैं कुछ जानी मानी शख्सियतों को। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर की। किर्लोस्कर उद्योग समूह के वे संस्थापक थे। वे विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट मुंबई में अध्यापक नियुक्त हुए। अपने शुरुआती समय में लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर ने एक साइकिल की दुकान खोलकर जीवन संघर्ष प्रारंभ किया। बाद के समय में अपनी मेहनत और कठिन लगन से इन्होंने किर्लोस्कर की कई औद्योगिक इकाइयों स्थापना की। किर्लोस्कर ने जीवन में पहली बार एक व्यक्ति को

0: चलाते हुए देखा तो अपने भाई के साथ मिलकर किर्लोस्कर ब्रदर्स नाम से साइकिल की दुकान खोली और अतिरिक्त समय में साइकिल बेचते, उनकी मरम्मत करते और लोगों को साइकिल चलाना भी सिखाते।
1: And today is the birth anniversary of Ramakant Desai, who represented India in Test cricket as a fast bowler from
0: 1959 to 1968. और सुबह
1: आपको
0: पता है कि स्नो बर्ड के बारे में कहा जाता है कि न धूप चाहिए न गर्मी, इसे ठंडी हवा उसे भाती है।
1: Oh, so beautiful.

0: खुशी भरे इस गीत के बाद अब एक और साहित्यकार को याद कर लेते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार, लेखक और कवि थे भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। भुवनेश्वर साहित्य जगत का एक ऐसा नाम है जिसने अपने छोटे से जीवन काल में लीक से अलग किस्म का साहित्य सृजन किया। भुवनेश्वर ने मध्य वर्ग की विडम्बनाओं को कटु सत्य के प्रतिरूप में उकेरा। उन्हें आधुनिक एकांकियों के जनक होने का गौरव हासिल है। एकांकी, कहानी, कविता, समीक्षा जैसी कई विधाओं में भुवनेश्वर ने साहित्य को नए तेवर वाली रचनाएं दी। एक ऐसा साहित्यकार जिसने अपनी रचनाओं से आधुनिक संवेदनाओं की नई परिपाटी विकसित की। प्रेमचंद जैसे साहित्यकार ने उनके भविष्य का रचनाकार माना। इसकी एक खास वजह यह थी कि भुवनेश्वर अपने रचनाकाल से बहुत आगे की सोच के रचनाकार थे। उनकी रचनाओं में कालिता बोध है, परंतु आश्चर्यजनक रूप से ये भूतकाल से न जुड़कर भविष्य के साथ ज्यादा प्रासंगिक नजर आती है। कारमा की भूमिका में स्वयं भुवनेश्वर ने लिखा है कि विवेक और तर्क तीसरी श्रेणी के कलाकारों के चोर दरवाजे हैं। उनका ये मानना उनकी रचनाओं में स्पष्टता दर्शाता है। इंसान को वस्तु में बदलते जाने की जो तस्वीर उन्होंने उकेरी, वो आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है।
1: We're going to talk about another novelist, Birthday Vikram Seth, poet, novelist, travel writer, celebrates his birthday today. We all know that his most famous and celebrated novel is A Suitable Boy, written in 1993. Of course, his next novel, An Equal Music, in 1999, was a love story set in the world of professional musicians. His exceptional contributions to literature have earned him major international and national honors, including the Sahitya Academy Award in 1988, the W.H. Smith Literary Award in 1994, and India's prestigious civilian honor, the Padma Shri, in 2007. Today is also the birthday of American-born Australian actress Nicole Kidman, known for her considerable range and versatility. Besides a whole bunch of hit films, her discography consists of several audio recordings, including one spoken word album, one extended play, and three singles. A five-time Oscar nominee, she is the first Australian actress to win an Oscar for the movie The Hours.
0: और इसके साथ ही वक्त चला है आपसे अनुमति लेने का। और कल है योग दिवस, और हम सब जानते हैं कि योग केवल एक व्यायाम नहीं है बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा का संतुलन स्थापित करने का भी मार्ग है। तो हम सब कल प्रण लेते हैं कि कल जो है सब लोग सुबह उठकर योग जरूर करेंगे।
1: यस, एग्जैक्टली। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशे की जाएंगी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप शबाना बेगम से खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम मोदी मगरबी बंगाल के शहर हुगली से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त जारी करेंगे। भारत के सीनियर अफसर शाह विवेक अग्रवाल को माली एक्शन टास्क फोर्स FATF का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। भारत ने दहशतगर्दी को माली मदद फराहम करने की लानत से निमटने के अपने अज्म को दोहराया है। NTA नीट UG के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्कगीर सतह पर मॉक ड्रिल करेगा, ये इम्तिहान कल कराया जाएगा। सेबी ने फौत शुदा सरमायाकारों के कानूनी वरसा को शेयर्स की आसान मुंतकली के तरीक़ेकार की मंजूरी दे दी है। और मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर चेन्नई में सीरीज के तीसरे और आखिरी ODI में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी

आज सुबह ओडिशा का दौरा कर रहे हैं, जहां वो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से उनके आबाई जिले मयूरभंज में मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी का ये दौरा सदर जमहूरिया के 68वें यौम पैदाइश और ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। वजीर आजम आज देर गए मगरबी बंगाल के शहर हुगली से पीएम किसान स्कीम के तहत 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों के लिए 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी करेंगे। इसमें मगरबी बंगाल के 45,00,000 से ज्यादा किसानों के खातों में भेजे जाने वाले 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर मगरबी बंगाल के आवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस रोज़ एक ऐसी रियासत का जश्न मनाया जाता है जिसने अदब, मौसीकी, आर्ट, रूहानियत, साइंस, तिजारत और समाजी इस्लाह की शक्ल में मुल्क की तारीख में ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मगरबी बंगाल की तारीख में इस दिन की खास अहमियत है। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत बहुत सी काबिल जिक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए अहम कदम उठाए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है और इसमें बाख्तियार भारत के तस्वुर के लिए अक्सर तब्दीली लाने वाले इकदामात का जिक्र होता है। बाख्तियार भारत के 2 सबसे अहम सुतून सेमीकंडक्टर इको निज़ाम की तश्कील और खला से मुतालिक स्टार्टअप्स की ज़बरदस्त तरक्की हैं। इस ताज़ा तरीन पॉलिसी से सेमीकंडक्टर इको निज़ाम की उमंगें मैनुफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग में बदल गई हैं। सेमीकंडक्टर्स कौमी सलामती, इक्तसादी इस्तेहकाम, डिजिटल खुदमुख्तारी और मुस्तकबिल के मुकाबला जाती रुझान की बुनियाद हैं। ये मिशन दिसंबर 2021 में शुरू किया गया था। 2026 तक हुकूमत ने सेमीकंडक्टर मिशन दुआम का आगाज किया, जिसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि पहला मिशन इस पेचीदा सनत के लिए बुनियाद के तौर पर कायम किया गया था और मिशन दुआम के तहत इको निज़ाम में गहराई लाई जाएगी। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी का दौरा करेंगे। वो महालक्ष्मी मंदिर के अहाते में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे और मंदिर के इलाके में मगरबी महाराष्ट्र मंदिर तरक्याती मनसूबे के तहत शुरू किए गए तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लेंगे। जनाब शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। बाद में जनाब शाह इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। जनाब शाह इमदाद बाहमी चीनी मिल को नया नाम दिए जाने और तौसीकारी से मुतालिक एक प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। जनाब शाह इचलकरंजी में कलापन्ना अवार्डे टेक्सटाइल पार्क ग्राउंड में किसानों के एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि भारत को बहरान से दो चार दुनिया में अपने कौमी मफादात, दिफाई खुदमुख्तारी और कसीर कुतबियत को बरकरार रखते हुए ताल्लुकात को मुस्बत बनाना चाहिए। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम 2026 से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने बहुत से शोबों में भारत अमेरिका शराकतदारी को गहरा करने के बारे में इजहार ख्याल किया, जैसा कि दोनों ममालिक अपने मामलात और पेचीदगियों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे भारत तरक्की कर रहा है, इसके मफादात में भी तौसी और तनव पैदा हो रहा है। ये आकाशवाणी है। भारत के सीनियर ब्यूरोक्रेट विवेक अग्रवाल को मालियाती टास्क फोर्स FATF का 2026-27 की मुद्दत के लिए नायब सदर मुंतखब किया गया है। वो इंग्लैंड के जिल्स थॉमसन की जगह लेंगे। जनाब अग्रवाल इस वक्त वजारत सकाफत में सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो FATF के लिए भारतीय वफद की क्यादत कर चुके हैं। वजारत खारजा ने जनाब अग्रवाल का इंतखाब किए जाने को भारत की बड़ी कामयाबी करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत ने कहा कि जनाब अग्रवाल के तकर्रुरी से दहशतगर्दी की माली एहानत और गैर कानूनी माली नेटवर्क और गैर कानूनी मालियाती ढांचों के खात्मे के भारत के अज़्म को मजीद तकवीत हासिल हुई है। इम्तिहानात की कौमी एजेंसी NTA NEET UG 2026 के दोबारा इम्तिहान से पहले आज एक मुल्कगीर मॉक ड्रिल का इनेकाद करेगा।
امتحانات کو خوش اسلوبی، محفوظ اور شفاف طور سے کرائے جانے کو یقینی بنانے کے

0: संसद के हिस्से के तौर पर ऐसा किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कल दोबारा इम्तिहान से पहले टेलीग्राम को आरजी तौर पर ब्लॉक करने के मरकज के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि प्लेटफॉर्म का निज़ाम गैर कानूनी मवाद के तेज रफ्तार फैलाव को मुमकिन बनाता है और ये कि महदूद नौयत के दिए गए इकदाम इम्तिहान में धोखाधही को रोकने में नाकाम रहे थे। भारत के सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड सेबी ने कुछ इस्लाहात की मंजूरी दी है जिसका मकसद मार्केट की इस्तेदाद में बेहतरी लाना, दरकार दस्तावेजात की फराहमी में आसानी पैदा करना और माली शोबे में जाब्ता जाती फ्रेमवर्क्स को मुस्तहकम बनाना है। कल मुनाकिदा 214वीं मीटिंग में सेबी बोर्ड ने फौत शुदा सरमायाकार के कानूनी जानशीनों और दावेदारों के लिए सिक्योरिटीज की मुंतकली को आसान बनाया है। ये फैसला छोटी रकम वाले दावों को जल्द निपटाने के मकसद से किया गया है ताकि इसके लिए कम से कम दस्तावेजात दरकार हों। सेबी ने कुछ मामलों में पैन की लाजमियत को भी खत्म कर दिया है और QR कोड वाले डेथ सर्टिफिकेट्स को तस्लीम कर लिया है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए खुली मार्केट में अपने फरोख्त किए गए शेयर्स को वापस खरीदने का निज़ाम भी दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। ये निज़ाम इस साल यकम अगस्त से दोबारा शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों, असासे की तामीर नौ करने वाली कंपनियों और कर्जा देने वाली कंपनियों के माबेन बकौल उसके गहरी सांठगांठ पर शदीद तशवीश जाहिर की है जिससे उस तरीके पर शकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं जिसके तहत कर्ज नादहिंदगी के मामलात निपटाए जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि उसे सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल पर तशवीश है जिसे आवाम की बहबूद के लिए खर्च किया जाना चाहिए। योगा का बैन अलावामी दिन 2026 कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। ये 12वां योगा का बैन अलावामी दिन होगा जिसका मौजू है सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योगा, जो सभी उम्र के लोगों के लिए योगा की अहमियत पर जोर देता है। मगरबी बंगाल में खलीज बंगाल से उठने वाले मानसून के सरगर्म बादलों और शदीद रतूबत के सबब हिमालय से मुत्तसिल अजला में आज से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने अरुणाचल प्रदेश, नागामनी, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। मर्दों के क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जारी 3 एक रोजा बैन अलावामी मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज दोपहर चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मेजबान भारत पहले ही सीरीज में 2-0 से सबकत हासिल किए हुए है और अब वो सीरीज के तीनों मैचों को जीतने के मकसद से मैदान में उतरेगा। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम मोदी मगरबी बंगाल के शहर हुगली से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए PM किसान स्कीम की 23वीं किस्त जारी करेंगे। भारत के सीनियर अफसर शाह विवेक अग्रवाल को माली एक्शन टास्क फोर्स FATF का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। भारत ने दहशतगर्दी को माली मदद फराहम करने की लानत से निपटने के अपने अज़्म को दोहराया है। NTA नीट UG के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्कगीर सतह पर मशक करेगी। ये इम्तिहान कल कराया जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मध्यम लहरी 229 मीटर्स अर्थात 1305 KHz आणि FM बँड 102 MHz श्रोते हो आपण ऐकत आहात आकाशवाणी परभणी केंद्राचं प्रसारण। श्रोते हो आता सकाळचे ठीक 10 वाजले आहेत। प्रसारित करीत आहोत मिश्र संगीताचा कार्यक्रम।
2: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या, वेळ जाऊ देऊ नका। रवी सीडचा लोटेचे सोयाबीन बियाणे, उन्नती समृद्धी भरघोस उत्पादनाची खपरी, मर्यादित साठा, आजच घ्या।
1: श्रोते हो कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूया ययाती देवयानी या नाटकातलं हे कवी कुसुमाग्रज यांचं नाट्यपद।

0: में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 वर्षे विश्वासाची, विकासाची, जनकल्याणाची।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

जळगाव केंद्राची निर्मिती असलेला कार्यक्रम वनिता मंडळ श्रोते हा पणतलात हा कार्यक्रम प्रसारित करण्यात आला. प्रसारभारतीच्या वेब ओटीटी प्लॅटफॉर्म न्यूज ऑन एआयआर आणि तसंच आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून साधारण सकाळचा माफ करा दुपारचे एक वाजता दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणारे हिंदी समाचार आम्ही स्थानिक करू ठीक एक वाजता आणि त्यातून पाच मिनिटांनी गीत बनवून हा मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम सुरुवातीला ठीक एक वाजता दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणारे हिंदी समाचार. नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़गढ़ पहुंचे. ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू कल्याण पटेल, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया. अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने अष्टम जन्मदिन भी मनाया. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहाड़गढ़ गांव पहुंच गए हैं. राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गाँव का दौरा किया. वे पवित्र संतरी जहेरा गोजहरा उपवन में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे. इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरामपुर में ओडिशा सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. वे ऊर्जा अवसंरचना स्वास्थ्य सेवा शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रूपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे. वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे. इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी है. सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है. उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था. प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है. गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और कुशलकरंजी के दौरे पर है. वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यो का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद वे कुशलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यालय कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है. वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज ग्राफ थेरेपी अभ्यास संचालित कर रही है. परीक्षा से पहले मानव तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉकड्रिल की जा रही है. एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनः परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां पुख्ता है. भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया. वे 77 वर्ष के थे. श्री मुखोपाध्याय ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न

टीम के समाचार सेवा प्रभाग ने भी कार्य किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। विश्व भर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योग दिवस के मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड फोर्ट पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आकाशवाणी मुंबई केंद्र की दिया है अस्मिता वाहिनी स्वतः हमसे कार्यक्रम अपन प्रसार भारती चार वेव ओटीटी प्लेटफॉर्म और न्यूज ऑन एआईआर या मोबाइल ऐप पर ऐकू कर सकता। दुपारी सरकार अजून 5 मिनिटं आणि 5 सेकंद झालेले आहेत। आता प्रसारित करीत आहेत गीत विभाग मराठी चित्रपट समितीचा कार्यक्रम। कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूया आनंदी गोपाळ या चित्रपटातील ऋषिकेश रानडे आणि आनंदी जोशी यांनी गायलेलं हे गीत आहे वैभव जोशी यांचं। संगीतबद्ध केलं आहे ऋषिकेश सौरभ जसवाल यांनी।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के देशों में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रवति परिदा जी, ओडिशा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान

0: सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
1: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: कामाख्या का कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट UG पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में CCTV निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
2: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय

0: योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
1: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बहुत अच्छी की तरह से मैनेज कर सकते हैं और ये प्रूव हो चुका है।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
2: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को

0: आइए, आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव जोशन श्रीवास्तव। शुरू आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है, जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो की पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, उसे बाबा धाम या सुकाश शहर भी कहा जाता है, जहाँ पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की तीसरी किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा फैसला के लिए मैं हूँ आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथी कमेंटेटर वैभव कृष्णा श्रीवास्तव।
1: आप सुन रहे हैं सिद्धार्थ, ग्रेट डे फॉर the state of Bengal, a great day for the farmer brothers and sisters of the country, a Vikasit Bengal, a Vikasit Bharat, a developed Bengal, a developed India, a resolve to make the country a Vikasit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, who has made a vow to make India world class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Shri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Minister of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore farmers will receive the benefit during the 23rd installment. So that's truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams, and we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
0: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और जिस तरह की बात कर रही है, ये बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की तीसरी किस्त जारी करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रूपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगे। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में 900 करोड़ रूपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहाँ पर है वो 15,000 करोड़ रूपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश भर में कुल वितरण राशि जो थी 45,00,000 करोड़ की और इससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रूपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहाँ एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है, क्योंकि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
1: Absolutely, Siddharth, to make the incomes of the farmers go double and triple, then the country develops.

जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 300वीं किस्त भी जारी करेंगे।

हिस्सा बना और यह तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व है। अगर देखते हैं इसमें तो डॉक्टर श्यामल प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की भी देखा और मुरली से जुड़ा है। ये 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगाल हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामल प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखा था और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है। डॉक्टर श्यामल प्रसाद मुखर्जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस रेजिस्ट ऑपरेशन अनेक नेसेसरी अकोमोडेट। These were the words of this great man who gave vision to the people of West Bengal that yes, we as part of India have to make India a Sony Pachilla, that golden bird again. We have fought a long battle against the British.

शर्मा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है। सिद्धार्थ इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस रेजिस्ट ऑपरेशन अमेक नेसेसरी अकोमोडेट। These were the words of this great man who gave vision to the people of West Bengal that yes, we as part of India have to make India a fully Kachilya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make what has been called the country great. And today's occasion, Reverend, we remember all those great years, during the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people, strong public opinion in large. Now we have the western part of Bengal region within India, our people stand as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Sadat, was taken. The ground in the future of Bengal is going to lay the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress. बिल्कुल की बात करें तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल जिला सद्भाव और विकास, राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और आपसे आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी है और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हिंदुत्व, वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति और बंगाल अब विकास की इतनी ऊंचाई को छूने जा रहा है। एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, दिस इज द प्रॉमिस विद व्हिच द गवर्नमेंट हैज बीन फाउंडेड इन बंगाल आफ्टर इयर्स एंड इयर्स ऑफ इनजस्टिस। नाउ वी सी दैट द गवर्नमेंट एंड दिस विल बी अ गवर्नमेंट व्हिच विल बी गवर्नमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड टुडेस फंक्शन सिद्धार्थ इज नॉट जस्ट समथिंग दैट वी आर सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज द 23rd इंस्टॉलमेंट विद अ डायरेक्ट कॉन्स्टर। वी डोंट जस्ट सी वन प्रॉमिस, वी सी मेनी प्रॉमिसेस टुगेदर। वी सी an actual execution of the digital Bharat. We see no middlemen, we see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries. In West Bengal alone in the 23rd installment, imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now. And the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country, along with the release of the 23rd installment of the PM Kisan Nidhi, and the reform schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on national farming, NMNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which is, it was approved by the Union Cabinet in the July 2025 and launched on the 11th of October 2025. An initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity, and limited credit flow. Imagine. So that has been so many steps. We are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers, it's not just the money that is going to the farmers, it is also fertilizers. It is also the good quality of seeds. It is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.

जो यात्रा है ये नासिक योजनाओं की यात्रा है, जबकि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्रोस्टॉक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिसके लगभग 28,140 करोड़ रूपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही है, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में अभी तक का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा और ये बहुत कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रीय सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी। तो चीजें डिजिटल लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट। अब सुन लिया चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी। And I want to say about it, don't just be the procurement of things that will happen in a very smooth and a very functional way, but the whole line of credit. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested in those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizer, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit of the farmers. And then when you get those rates, and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The Kisan board, farmer brothers and sisters are getting support from the government. That is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Enkeda. When you include each and every person who is there in the local town of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Viksit Bharat. When you get a Viksit Bharat, you get a Viksit Bharat. You get a Viksit Bharat. You get a Viksit Bharat. You get a Viksit Bharat. You get a Viksit Bharat. You get a Viksit Bharat. You get a की भूमिका को खत्म किया जा रहा है ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसे सोचिए कि वहाँ किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद प्रदेश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है, जिनका वो प्रोडक्ट होता है, उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है। देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव को हम डेवलप करें, फॉर्म को डेवलप करते हुए और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़े ताकि एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी में, जैसे आप आज अपनी टेक्नोलॉजी के बहुत बात करते हैं, तो उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए। और जितनी भी सारी इसमें इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में, जहां जहां किसानों को चाहे हम किसान के फ्लाइट की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो, आज जहां ट्रेडिंग देने की बात होती है, तो किस तरीके से आज वेदर फोरकास्टिंग की बात करते हैं, हम हर तरीके से वैधानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। About the word that you've used when you have used this word earlier as well, which is sashaktana, which is to make the farmer brothers and sisters empowered. How do you make them empowered exactly? That is the question, and that was probably the question in the mind of the Honorable Prime Minister when he had introduced the Digital India Mission. Because imagine a farmer sitting in one corner of a village, somewhere completely disconnected what is going on in the world, but he knows and he trusts the government. And then he realizes that now is the scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a

0: or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the life of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered, you are self-reliant. आप आत्मनिर्भर हैं कि आप स्वयं वो फैसला ले पाए, आप स्वयं उस डिवाइस से यूजिंग दैट मोबाइल फोन यू कैन डू व्हाट एवर यू विश टू, यू कैन गेट दैट डायरेक्ट ट्रांसफर, यू कैन चेक योर बैंक अकाउंट, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया मिशन, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, द फाइनेंशियल सिस्टम, यू कैन गेट ऑल दोज बेनिफिट्स टुगेदर. एंड हाउ एग्जैक्टली डज दैट हेल्प यू? इट हेल्प्स यू टू बी अ फार्मर ऑफ द 21st सेंचुरी, इट हेल्प्स यू टू बायोडाइवर्सिफाई, इट हेल्प्स यू टू नॉट जस्ट गेट stuck in a rut like the farmers of the yesteryear governments who were just stuck because they did not have the credit support, they did not have the support of the raw materials, they did not have the support of logistics. Imagine the kind of work that is being done through infrastructure, through line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. How important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back? What is this goal? What is this thing?
1: इस तरह की जो तकनीकी है देखो, आज से एक दिग्गज से तुमने कहा कि इनसे पहले इस तरह की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते थे कि इसके माध्यम से आप कुछ कर सकते हो. और डिजिटल जैसा कि आज पीएम किसान के तहत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खाते में जो पैसे पहुंचने वाले हैं 18,880 करोड़ रुपए.

जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाज है, उनको अभिवादन करते हुए उनका

तो वीर भी रहने का सभ्य साथी संदेश दे करते हैं। फोकस अस्मिता वाहन प्रसाई का है आज से आने उदय से कार्यक्रम आगे शुरू करता है। अस्मिता वाहन आज संध्या के 5:30 का हुए है। यह अंतर्गत जागतिक योग दिवस निमित्त योग शिक्षक प्रणाम महाजन जिनके सबसे लीला बच्चा अपने दशक आकाशवाणी जयदा केन्द्राची ही निर्मित है। संध्या के 6:30 सायंस कॉर्नर लघु ग्रह आणि त्यांचा शोध या विषय विक्रांत कुर्मे यांची मुलाखत। 6:30 वृत्त विशेष 6:30 माझा आवाज माझा सुरात या अंतर्गत कारभारी दर्शना दामले यांची मुलाखत। 6:30 लोकसंगीत 7:30 स्पॉटलाइट 7:30 राष्ट्रीय संस्कृत पत्रिका संस्कृत भारती 9:30 अखिल भारतीय संगीताचा कार्यक्रम विवेक कर्माणी यांचं गायन या पहिली अंदाज कार्यक्रम दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होते।

0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के राज्य तीसरी किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9,44,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
1: More than 2 crore women beneficiaries are amongst those farmers who will be getting the direct transfer this installment of PM Kisan Samman Nidhi. Imagine the level at which this scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine.

all to hell. Loving a father enough, I do not give plenty of money. पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज संन्यास और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है।

परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है।

सभी देशवासियों को इस आयोजन की पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहन के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता के स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्ज्वल भविष्य के लिए

कोई देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने। हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार ने इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। स्वच्छ बंगाल में दशकों तक पहले ने और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं। रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति दी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

देंगे। ये भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे महिलाओं ने

tan mal. Pakistán, Kazajistán, imagínate. El que viene, Bangladesh, Hindú, Homeland, Women, शुरू किया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा इतिहासकार

भंडार कैसे कितने प्रबुद्ध अब प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने, जीडी गिरना जैसे उद्यमी बने, इसे आगे बढ़ाया। महात्मा लीडर पी आर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया, अखबारों में लेख लिखे गए, इससे कहानियां लिखी गई, वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्थापित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वयं फिर से मुखर होंगे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, इस बांग्ला से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था, आजादी के बाद उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम मंगल दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई, सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का वाइट वॉश किया गया। भाई बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी पुष्टिकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। इस बांग्ले को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया।

साथियों, हमारे पश्चिम बंगाल दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंगाल दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालत हो गई थी। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप करते चले गए, का रोजगार छीनता गया, संसाधनों पर दुष्पेक्षों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजय बनाया। आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा। जिन अधिकारों से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा हूं। मेरे चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया। अगले चुनाव के समय बंगाल की युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई, महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाई बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो भिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश

nunca. Espera acá. No te pases la tarde. ¡Vaya con el luteroco! ¡Vuelven a la bajada! ¡Sindicate, vale! ¡Juntas de matrimonio! ¡Con la copa! ¡A ver, no se le cargaba de cumbre! ¡No te choques, papi! ¡Oye, ay, que no! ¡Mira, no toques! ¡Ay, para la gente! ¡Y con! ¡Cuatro mil seres! ¡Cuatro jueguetes! ¡Cuatro! ¡Yo vengo a la vida! ¡Cada cerca de la casta! ¡Infrastructure se duya! ¡Vaya! ¡Vuestro se lo que aquí es polis! तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए तीनवीं घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहाँ इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में छोड़ और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज संजयन संतरागाछी लिंक लाइन ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ के लोगों को सुविधा होने वाली। साथियों आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्री स्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी। गांवों के मक्के और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद किसान क्रेडिट कार्ड डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम जनधन कृषि योजना शुरू की है। इसे पश्चिम बंगाल के 4 जिले पूर्णिया दार्जिलिंग अलीपुरद्वार और जलगांव शामिल है। इन जिलों में

बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इधर तो फिर 24 परगना के विसर्जन फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल खुलेगा, बंगाल अब इतिहास रचेगा। एक बार बांगला काम दे रहा है, एक और इतिहास जोड़ रहे हैं। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं।

की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे जीवन दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं। मेरे किसान भाई बहन, मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आज भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आस पास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलकर हमारी धरती माँ की रक्षा करें। वो हमारी माँ है। हम केमिकल से हमारी माँ को मारने का पाप नहीं कर सकते। हमें हमारी धरती माँ को बचाना होगा।

भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाई बहनों, विकास के अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है जिसे हमें कभी भूलना नहीं है और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने वाले को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में भी योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के

0: the future towards a victor planet developed India by 2047. We hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bear fruit, and we see all those great results in our lives and the lives of the country and the lives of everyone to be there in the future.
1: देर देर कार्यक्रम अपने समाप्त की ओर बढ़ रहा है। अब समय आज को जुड़ा बनेगा। श्रोताओं ने इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एफ खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव जोशना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार। संगीत आहे पंडित रघुनाथ मंगेशकर यांचं।

0: संभागी दी। इस दौरान उड़ीसा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रूपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ। रोड इससे जुड़ी परियोजनाएं नई गति दी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलिविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पास ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कौन जनसमूहन संबोधयन शीर्षा अवदत यद विकास परियोजन ऐतिहासिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपराया संरक्षण कुर्वन्ति मंदिर परिसर आधुनिक तीर्थ स्थान रूपेण प्रवर्तयिष्यति। षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतम वर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवस श्वः सम्पूर्णे विश्वे आचर्यते। अस्मिन् वर्षे द्वादशः अन्ताराष्ट्रिय योग दिवस आचर्यते, यस्य विषयः स्वस्थ जीवनाय योगः इत्यस्ति। यो हि समेषाम् आयुवर्गाणां कृते योगस्य महत्त्वं प्रतिपादयति। उत्पलस्यां स्वरूपेण संस्कृति मन्त्रालयः भारतस्य समृद्धां सांस्कृतिक योग परम्परां च संदृश्य देशस्य शत प्रतिष्ठित स्थानेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य विशेष कार्यक्रमाणाम् आयोजनं विधास्यति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू श्वः मध्यप्रदेशस्य जबलपुर नगरे राज्यस्तरीयस्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण स्थास्यति। कार्यक्रमः प्रातः सार्ध सप्तवादनतः सदर क्षेत्रस्य गैरिसन ग्राउण्ड इत्यत्र आरप्स्यते। अद्य सायंकाले राष्ट्रपतिः तत्र प्राप्स्यति, यत्र राज्यपालः वल्लभभाई पटेलः विमानस्थानके तस्याः स्वागतं करिष्यति। भारतं सोमवासरादारभ्य द्विदिवसीयं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदानां सम्मेलनम् आयोजयति। अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षः राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः भविष्यति। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन श्वः पर्यन्तम् उप हिमालयीय पश्चिम बंगस्य सिक्किम राज्यस्य च पृथक् पृथक् स्थानेषु अत्यधिक वृष्टौ रक्तवर्णीया पूर्व संचेतना प्रदत्तास्ति। ऋतु विभागेन दिने केरल माहे तमिलनाडु पुदुच्चेरी करैक्कल प्रदेशेषु पूर्वोत्तर भागेषु च प्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम् अस्ति। हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब दिल्ली उत्तराखंड पूर्वी मध्य प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेशेष् च विद्युद्योतनेन सह मेघगर्जनस्य संभावना ऋतु विभागेन प्रकटिता। बिहार आंध्र प्रदेश उत्तरांतरिक कर्नाटक तेलंगाना विदर्भ अंडमान निकोबार द्वीपेषु च आगामी दिनद्वयोः एतादृश स्थितिः भविष्यति। ब्राजील देशः अद्य फिलाडेल्फिया क्रीडांगणे हेतुदेशस्य उपरि 3-0 इत्यंकैः सहजतया विजयं प्राप्य फिफा विश्वकप क्रीडायां स्वस्य प्रथमं विजयम् अभिलिखितम् इति वार्ताः। आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। संध्याकाळचे 6:30 होत आहेत। आता येतो आमचा पहिला कार्यक्रम सायन्स कॉर्नर। सायन्स कॉर्नर या कार्यक्रमात आज ऐकूया लघुग्रह आणि त्यांचा शोध याविषयी विक्रांत कोरमोडे यांचे रोशन जाधव यांनी घेतलेली ही मुलाखत ही आकाशवाणी मुंबई केंद्राची निर्मिती आहे।
1: श्रोता आजच्या सायन्स कॉर्नर या प्रकरणात मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। श्रोता

0: दिला होता है तो वो काम करेंगे जहाँ से तो बिग बैंक की भी क्रिया है अपन बताए जाते हैं बिग बैंग के लिए मानो तो सूर्य कार्यालय ग्रह कार्यालय ग्रह कार्यालय
1: तारे

0: Но ты вон его стар. А как бы ты еще смотрел, то слабо. Что-то ну, Прайм Мандри Нарегона Моди Янкян Хаспекал. Прайм Мандри Викафит Бара Трезгай Этери Антаргат. Повышки Кути Рупе Анча Поцин Параледиса. Тейт Витарен Кадятала. Я Розгар Салядно Поцинатур. Дешача Розгар Айот Докетала Бэкоти Дэнара Я Йожрешки. Сомбандит Вивида Палунчи Чайча. Апан Акча Зутта Вишеш Маде Парарахот. Что-то, Прайм-Мандри Нарегона Моди Янкян Прайм-Мандри विकसित भारत रोजगार योजने अंतर्गत 2400 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहनपर निधीचं वितरण केलं. खरं तर ही योजना मात्र कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांनाही एकाच वेळी थेट प्रोत्साहनपर लाभ देणारा देशातला पहिलाच अभिनव आणि पथदर्शी उपक्रम ठरला आहे. अर्थात हे घडून आले ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या द्रष्ट्या नेतृत्वामुळे. ही योजना म्हणजे निव्वळ रोजगार योजना नाही तर व्यावसायिक आयुष्याची वाटचाल सुरू करणाऱ्या युवा वर्गाच्या पाठीशी केंद्र सरकार कायम ठामपणे उभं असल्याची ग्वाही देणारं आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन देणारं माध्यम असल्याचंही त्यांनी अधोरेखित केलं. या अनुषंगानंच या पथदर्शी योजने विषयी प्रधानमंत्री काय म्हणाले ते ऐकूया त्यांच्या शब्दात.
1: दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है. भारत के टैलेंट स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है. दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके. और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ. यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोची जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है. यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है. साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती है या तो फिर उद्योगों के लिए बनती है, लेकिन ये एक योजना ऐसी है. इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे

दिन का ये कार्यक्रम है। आप इस रात में रात को नहीं जाता, वहीं के पांच दिन के लिए इंसान नहीं जाता, अपने चरित्र को देखता है, आम जनता

0: परिसी समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खाते में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद हुर्मुज जल बंदरगाह को फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर बना है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण माझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूँ। मैं कामना करती हूँ कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं।

0: ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਪਰਿਆਇ ਬਣਾ ਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਬੰਦਾ ਹੈ।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
0: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
1: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुमागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रो का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: 到金水中一人的脸。
1: 什么叫沈佳丽啊？把脸刷的脸。Marina Antarashtriya Yog Divas कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ते उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड फोर्ट पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्रीय कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड फोर्ट पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 4 विशेष स्थलों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक सम्मान परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। नई दिल्ली में शाम के वक्त गंगा एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोती बाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि काम काजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक एप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान और लोग हो गए, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक अपने थकान रहती है। उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान है वो दूर हो जाए।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार है। आज भोपाल में भारतीय दूतावास ने लोहिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेंचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकी साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकेजी वुमेन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त

0: हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पूर्ण परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट यूजी पूर्ण परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
1: परीक्षा के सुरक्षित पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों समन्वयकों पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सत्यान अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पूर्ण परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार के परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 70,000 करोड़ रूपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा खुद डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने सटल उद्योग की मजबूती रखी है।
3: ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इसके तहत प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटी छात्रों को खुद डिजाइन करना सिखा रही है और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही है। दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स हैं जिनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल है और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती है।
2: भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है और निजी संस्थान रॉकेट लॉन्च उपग्रह निर्माण और संचालन डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियाँ कर सकती है। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 800 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8,000 से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 हजार डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महेंद्र ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म इस देश की स्थापना और कार्य स्टार्टअप में बढ़ावा देने वाली नीतियों में एक रास्ते की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है जो सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू नदी को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित

चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़ी कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम के खबरों के कुछ ही घंटे बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज मथुरा दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हरा कर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड बोर्ड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Good evening. This is Akashvani and I am

0: full band spotlight on the eve of International Yoga Day. We bring you an exclusive interview with Pratap Rajaka, Union Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush. Interviewer is Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
1: होमटाउन की तरह इस वर्ष भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस साल विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। आखिर क्या है योग? ये ऐसी प्राचीन भारतीय विद्या है जिसने पूरी दुनिया को ये सिखाया है कि सांसों पर नियंत्रण के माध्यम से हम अपने विचार और जीवन को किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। विश्व भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को भी प्रमाण कर रही है। योग दिवस 2026 और योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मुख्य अतिथि मौजूद हैं। मैं स्वागत करती हूँ केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी का। सर, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपसे इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा पर हेल्दी एजिंग के बारे में जानना चाहूंगी। इस थीम को चुनने के पीछे क्या विचार था?
2: अभी इस साल जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है 12वां, उसकी थीम बहुत ही दूर की सोच हम जैसे बोलेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने की है, क्योंकि बहुत सारे सुझाव थीम के बारे में आए थे। हमने उसमें से कुछ गले चुने, प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे थे और उन्होंने ये थीम इसमें से सिलेक्ट की। इसके पीछे का एक ही मतलब है कि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा वाला अगर कोई देश होगा तो हमारा भारत देश। लेकिन जब हम आगे जाकर सोचेंगे, हो सकता है 25-50 साल के बाद में दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग वाला देश भी भारत ही है, और उस समय भी हमारे बुजुर्ग लोगों की स्वास्थ्य ठीक रहे, उनकी सेहत अच्छी रहे और उनको कोई बीमारी या कठिनाई ना हो, ये सोचकर ये थीम रखी थी योग पर ही दी थी कि अगर बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आज से हर दिन योगा करो। और उसके लिए हमने योग 365 भी हमने लॉन्च किया है कि एक दिन योग करने के लिए नहीं है, योग हर दिन करना चाहिए। ये थीम के पीछे का मतलब है कि बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहो।
1: आज विश्व भर में जो वैज्ञानिक हैं और चिकित्सा समुदाय है वो योग की हेल्दी एजिंग में काफी योगदान दे रहे हैं और उसको लेकर काफी गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। काफी सारे रिसर्च पेपर भी इस विषय पर पब्लिश हो चुके हैं, तो इस विषय में कृपया हमारे श्रोताओं को थोड़ी जानकारी दें।
2: ये देखिए, जो भी बड़े बड़े योग संस्थान है, हमारे लिए आयुष के लिए जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है, पहले जो था हमारा आयुर्वेदा था, योगा था, लोग तो इसको जानते थे, इसकी ताकत भी जानते थे कि वह कितना उपयोगी है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे कि वो एविडेंस बोलते थे, रिसर्च क्या हुआ इसके बारे में पूछते थे, वो बहुत कम था। लेकिन 2014 में जब आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई और 2014 से लेकर 2026 तक के 12 साल में योगा क्या हो, आयुर्वेदा हो, सभी के आयुष के ऊपर बहुत सारे हमने रिसर्च भी बढ़ाए, एविडेंस भी हम इकट्ठा कर रहे हैं कि हम खुले दिल से दुनिया के सामने जाए कि हमारे प्रमाण है और एक बात सही और उसमें है भी। तो वैसे योगा के भी रिसर्च हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बन गए थे बेंगलोर में, जब हम आयुष मंत्रालय जब हम उनको आर्थिक मदद भी करते हैं रिसर्च करने के लिए, तो ये सभी के ऊपर रिसर्च की वजह से ये लोगों को प्रमाण हो गया कि योगा, और दूसरा लोगों ने खुद अनुभव लिया कोरोना के समय, जब कोरोना जैसी महामारी आई तो कोई दवा टैबलेट नहीं थी या वैक्सीन भी नहीं था, तब लॉकडाउन में लोगों ने घर में बैठ कर ही दिन रात शाम सवेरे योगा किया, आयुर्वेदिक उपचार कार्य वगैरह।

0: संख्या वाले देश ने भी कोरोना पर अपने कंट्रोल वहां पर किया। तो लोगों को भी मालूम है कि योगा एक प्रिवेंटिव है, कोई बीमारी ना हो स्वस्थ रहने के लिए योगा किया जाता है। और दूसरा ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं मन के शांति के लिए योगा बहुत अच्छी तरह से काम करता है और इसके भी प्रमाण है। दुनिया मंत्री अभी देखो 2014 में जब से अंतर्राष्ट्रीय की बैठक में हुई अंतर्राष्ट्रीय योग दिन हमारा मंजूर हुआ है कि जो आज 190 कंट्री से ज्यादा कंट्री में हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है। हमारे देश में तो गांव गांव तक योग का लोग अभ्यास करते हैं, प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री की भी ये सोच रहे थे कि हर आदमी चाहे बालक हो या चाहे बुजुर्ग हो चाहे महिला हो या हमारे राष्ट्र हो सभी ने योगा करना।
1: आपने इतने विस्तार में हमें समझाया योगा के बारे में। हर साल की देश के अलग अलग भाग में योगा का मेन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेन इवेंट कलकत्ता यानी कलकत्ता में आयोजित किया जा रहा है। इस बड़े आयोजन के लिए किस प्रकार की तैयारियां चल रही है और इस बार के मुख्य कार्यक्रम में क्या विशेषताएं होंगी?
0: इस बार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता को चुना। जैसा कि हमें हर साल अलग अलग प्रदेशों में जाके योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन कलकत्ता चुनने के पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है। क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी देशों में जाकर योग का महत्व लोगों को बताया था, योग का प्रचार भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कोलकाता हो या पश्चिम बंगाल में पिछली जो सरकारें थी उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया। शायद उनकी गलत फहमी होंगी कि योग अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, योग तो ऋषि मुनियों की देन है। हम इसका अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग कुछ उनकी ओर बैठे वो नाराज हो जाएंगे। उनको खुश रखने के लिए उन्होंने कभी योगा को प्रमोट नहीं किया। लेकिन ऐसा वहाँ की पूरी जनता ने बड़ी बहुमत से वहाँ पर एक हिंदुत्वी विचार संघवादी एनडीए सरकार की दिल्ली सरकार वहाँ पर चुनके दिए और वहाँ के आम लोगों की भी यह अपेक्षा है कि योग हमारे तरफ भी आए, हमने लोग योग यहाँ पर सीखे। कलकत्ता को चुना गया, बहुत सारी तैयारी हमने उसमें कही की, जैसे की 21 जून के 14 दिन पहले के काउंटडाउन कार्यक्रम होता है, वो 100 दिन में पूरे भारत वर्ष के 100 बड़े बड़े शहरों में भी योग महोत्सव वहाँ के इंस्टीट्यूट को साथ में लेकर किया जाए। उसके बाद में हमारा आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा 4 बड़े काउंटडाउन के कार्यक्रम होते हैं। योगी हमारे अलग अलग प्रदेशों में चारों दिशाओं में हमारे देश के होते हैं। उसका पहला कार्यक्रम जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, भारत मंडल का हुआ। दूसरा जो कार्यक्रम था वो महाराष्ट्र के लोणार शहर में हुआ था, जहाँ पर वर्ल्ड फेमस थिएटर है। उसके बाद में 50 दिन पहले वाला जो कार्यक्रम था वो हमने हैदराबाद में जो वस्तु को पर्यावरण कामना शांति वाला हार्टफुलनेस बहुत अच्छी ढंग से वहाँ पर किया। सिर्फ वहाँ पर हमने योग महोत्सव नहीं किया, तो लोणार में हमने ऐसे बुक ऑफ रिकॉर्ड वहाँ पर त्रिकोण आसन का लोणार में बनाया, हैदराबाद में हार्टफुलनेस में भुजंग आसन का भी 4000 से ज्यादा, लोणार में भी 4000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ में किया था महाराष्ट्र में, वो भी रिकॉर्ड वहाँ पर स्थापित किया। फिर उसके बाद में कुछ ही दिन पहले वाला खजुराहो में हमने मध्य प्रदेश में किया और अभी मेन इवेंट ये कोलकाता में होने जा रहा है। तो कोलकाता में भी बहुत सारे जो तैयारी हुई थी और 21 तारीख को सवेरे हमारा जो रेड रोड है वहाँ पर करेंगे, क्योंकि पहले हमने परेड ग्राउंड चुना था। लेकिन अभी ये बारिश के दिन है, कभी भी बारिश आ सकती है, तो वहाँ थोड़ी भी बारिश आए तो किचन होने से डिस्टर्ब हो जाएंगे करके, और रेड रोड एक अच्छी जगह है तो वहाँ बारिश में रही तो कोई तकलीफ नहीं होगी, योगा कर सकते हैं। तो वहाँ पर योगा का मेन कार्यक्रम रहेगा और वहाँ के कॉर्पोरेशन और वहाँ के राज्य सरकार के साथ भी जाके हमने फिजिकली भी बैठक की, उनमें भी बहुत सारा गुस्सा दिखा। उन्होंने देखा यहाँ तो रोड पर करेंगे लेकिन कोलकाता के शहर के अंदर हर स्ट्रीट चौक हम योगा करने के लिए लोगों की व्यवस्था करेंगे, हर जगह स्क्रीन लगाएंगे, वहाँ पर भी आपको मैप वगैरह ये विचार करके लोग घर के बाहर आके गले में ही 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। तो तैयारी बहुत है, हमने तो ऐसा अनुमान लगाया था कि एक लाख तक लोग शामिल होना चाहिए वहाँ पर, लेकिन उन्होंने खुद हो गया कि हम गली गली में करके हम 10 लाख तक भी लोगों को योगा करने के लिए बाहर निकालने की कोशिश करेंगे।
1: योगा महोत्सव के दौरान जो आपने खजुराहो जिसका जिक्र किया था आपने भी, उसके दौरान योगा संगम पोर्टल योगा पार्क पोर्टल भी लॉन्च किया गया, तो हमारे श्रोताओं को कृपया आप बताएं कि योगा पार्क पोर्टल क्या है, आम जनता को इससे क्या लाभ होगा?
0: योग पार्क का जो पोर्टल है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हर गांव में चाहे छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो या बड़ी नगर पालिका हो, हर जगह में हर एरिया में अभी ऐसे योग क्लब बनने लगे। लोग एक व्यक्ति इकट्ठा आके योग करते, देखो ये अकेले करने में थोड़ा दिक्कत।

साधना की वह हृदय उनका उत्साह भी बना रहता है, तो उसके लिए योग पार्क बनना है। तो वो हमने स्कीम वहाँ पर लाई, हमने पूछे जो हमारी आयुष दोस्ती है बड़े बड़े जगह जैसे हमारे लोग बहुत सारे कंपनी है की उनको अपने बना के नहीं बना था, इससे ऐसा करने से कुछ योग पार्क बनने थे। तो उन्होंने सबने मिलकर लगभग 1000 से ज्यादा योग पार्क बनाने के लिए उन्होंने कर्ज दिया था। अभी

0: योग वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है कि 14 जून यानी कि योग दिवस से एक हफ्ते पहले आपके मंत्रालय ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें सुबह 5 बजे उठ के पूरी दुनिया भर से 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने योगा करा। इस पे मैं आपसे और जानकारी
1: चाहूंगा। प्रचार प्रसार भी करने की कोशिश की थी, लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान इस देश के बने, उन्होंने हमारे देश में और देश के बाहर के भी लोगों तक योगा को ले जाने की कोशिश की और लोग भी ये समझने लगे हैं कि भाई योगा से हमको मन शांति मिलती है, शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है, बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। इसके प्रमाण भी है, रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं, इससे आपको एहसास भी कि वो चाहते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, जो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ये छोटे समय में आधा घंटा पौना घंटा में कुछ समय देखे ये कर सकते हैं, तो उसको रोकने बना रही जो तुमने देख लिया क्या यूट्यूब पर एक लाइव स्ट्रीम करने का आयोजन किया था, मेरे भी उसका रिकॉर्ड तय हो गया। पहले का जो रिकॉर्ड था तो उसमें 2,40,452 लोगों ने ऑनलाइन योगा किया था, ये देखा नहीं, इसमें योगा भी लोगों ने किया है समय की मुक्ति और आज का जो हमारा रिकॉर्ड है तो 4,35,837 लोगों ने वहाँ पर एक साथ में अलग अलग जगह में किसी ने घर में किया, किसी ने गली में किया, किसी संस्था में बाहर किया, हमने भी यहाँ पर सभी हमारे मंत्रालय के लोगों ने यहाँ पर बाद में योगा किया, तो ये लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है योगा के प्रति। बहुत सारे युवा भी अभी योगा कर रहे हैं, जो की हमने योग अनपढ़ नाम का भी एक हमने उनके लिए पैकेज लाया हुआ है की उनके माध्यम से युवाओं को भी हम जोड़ रहे हैं, महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं, बुजुर्गो को भी है, नॉन कम्युनिकल जो 10 बड़े डिस्ट्रीज है उनके लिए भी हमने योग के पैकेज बनाए, बीपी वालों ने कौन से आसन करना चाहिए, शुगर वालों ने कौन से करना चाहिए।

0: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है। वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान उन लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाइब्रेट नाम का एक हमने आपके कार्य होती है। उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आए होगी वो दूर हो जाएगी और फिर से तुम अच्छी तरह से। उसके बाद में हमने अभी योग फॉर योर ट्रैवल्स लॉन्च किया। अभी लोग एक घंटे से दूसरे घंटे जाते हैं, 8-10 घंटे एक ही चेयर पर बैठे रहना पड़ता है फिर ट्रेन में, थकान सी महसूस होती है। तो फिर ट्रेन में भी तुम चेयर पर बैठे दूसरे आसन कर सकते हो, वो भी तुम तक लॉन्च कर दो। ऐसे बहुत सारे लोग को प्रचलित लोगों को प्रमाण देने के लिए निकले और लोकप्रिय भी होते जा रहे।
1: भारत वर्तमान में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपके अनुसार इस यात्रा में योग का क्या महत्व है?
0: 2047 में हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सभी देशवासियों ने हमने सपना देखा है कि हमको विकसित बनना है। मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक नजदीक से देखा है, अनुभव किया है, इसमें योग का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा फायदा होता है कुछ गिनते हैं, तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे दो टाइप के हमको कोई भी फिल्मों में दिखता है, उसमें डायरेक्ट भी फायदे होने वाले हैं, इनडायरेक्ट भी। जब लोग योगा करेंगे स्वस्थ रहेंगे, हमारे देश के नागरिक अगर स्वस्थ होंगे तो निश्चित उनका योगदान हमारे देश को आगे बढ़ाने में भी ज्यादा रहेगा। कम समय में भी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने जाएगा। दूसरी बार योग की वजह से रोजगार बढ़ेगा। अब हमारे पाठ्यक्रमों में भी योग आ गया, एसएड में भी योग आ गया, अभी योग को खेल का दर्जा भी मिल गया। तो अभी स्कूल से योगा सिखाना शुरू होगा तो हर जगह पे डिमांड होगी योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर। अभी भारतीय देशों से भी बहुत सारी डिमांड आ रही है कि हमें योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर हमें दीजिए योग सिखाने के लिए। और अभी लोगों में भी जो अवेयरनेस आ रहा है, तो लोग भी अभी जगह जगह पे जैसे कि हमारे ट्यूशन क्लास चलते बच्चों के, अभी योगा क्लास शुरू हो गए बहुत सारे गाँव में हमारे, वहाँ पर लोग फीस देके एक घंटा योगा सीखे।

0: अकेले में घर में नहीं कर सकते थे, वहां जाकर रोजगार भी बढ़ गया। तो निश्चित रूप से देश के विकास में, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ाने में योग का बहुत बड़ा योगदान है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, आपने योग दिवस 2026 के विभिन्न पहलुओं पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की और आपको भी योग दिवस की बहुत बहुत बधाई।
2: On the eve of International Yoga Day, you are listening to an exclusive interview with Pratap Rao Jadhav, Union Minister of State Independent Charge, Ministry of Ayush. Interviewer was Diksha Saxena, Akashvani correspondent. This program was produced and presented by the New Services Division of RTI.

mich nicht um die Pübers. Ich bin kommunalistisch und abhängig von UNESCO bei der Sinne. Ich bin Jun Kahidam, ich bin zu der Galatag, und ich bin hinterher, Samar Solstis, wenn ich Griechen von Kranken, Saika, Tug, Sopsel, Lombardin. Taki Art, Sengit, ist bei der Hiyuka, sehr lange sein Lüfte. Sengit, sind ich Kalamadu. Sengit, wie man das so cool hat. Sengit, der Hutter, तो कितनी सुनी होती ये दुनिया आज चित्रधारकी के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आती हैं।

लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नई दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जैसा घर। इस फिल्म में उस्ताद बिलाल खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में

ही आता है कई संगीत अपने अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने कई संगीत में अपना योगदान दिया है। 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म

फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को।

भी क्यों जरूरी है कि उस्ताद आमिर खान साहब ने सिनेमा के लिए शायद सबसे पहले नौशाद के ही संगीत निर्देशन में गाया था। फिल्म थी सन 1954 में आई शबाब। दूसरी बार उन्होंने सिनेमा के लिए तब गाया जब बी कांताराम ने फिल्म बनाई झनक झनक तारों बाजी साल 1955। सन 1956 में राजा नवासी की फिल्म आई बसंत बहार। इस फिल्म में ऐसा मौका आया जब फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्ती पंडित भीमसेन जोशी को हराने की जिम्मेदारी पांच गायक मंगल जी को सौंपी गई। मंगल जी तनाव में आ गए और चुपचाप पूना चली गई। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपका जो फर्ज है वो आपको निभाना होगा, ये तो सिर्फ फिल्मी गाना है, आपको ये गाना रिकॉर्ड करना ही होगा।

कंडीशन ऐसी है जिसके लिए तो आसिफ को आगे थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की आवाज किसी तरह उन्हें बनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मांग लिया था और इस तरह से मुगल आजम ने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए

इसमें फिल्म किसमें इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी।

इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शरणाई गायक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने के दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोलकर जी ने।

सहनाई की सहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर ले जानी मानी सहनाई बाबत उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठ

बगैर म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने। और गाने में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। निर्देशन वाली इस फिल्म में निर्वासी घराने के प्रसिद्ध गायक यानी जसराज ने एक गीत गाया था।

विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने सरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजनू सुल्तानपुरी।

तो हम पूरी बाबत तुम तुम्हारे शर्मा में ऐसे तो कई हिंदी गानों ने अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरी की जोड़ी।

चालू अपराधों वगैरह उन्होंने जैसे कि मुखर्जी के फिल्म अनुराधा में

0: उत्तर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की पढ़ाई मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायब न हो गई।
1: 1953 में जब मैं आश्रम में थी, मुझे

ये सोचे कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़ भाड़ वाले सभी में हो या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाए या ना सुन पाए, मगर यकीन मानिए हम

हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत में आपको गाकर बताती हूँ। नूर जहाँ जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: नहीं कर सकते। मैं बार बार इधर से उधर उधर से उधर आ जा रही थी, बस माता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और महमद रफी के बीच रोयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने महमद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म

0: राष्ट्रीय अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक कौमर का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार। In today's National Program of Music, we are going to broadcast a classical vocal performance by Dr. Vivek Karmadi.
0: Shuru ki pati agaad

0: देश की प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्र मुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से अपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. When such a radiant flame shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmadi. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
0: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित प्रहलाद कशालकर, पद्मश्री गिरिजा देवी, श्री ओंकार दाभोलकर और श्रीमती कुंदिनी मुंडकर जैसे महान संगीत मनुष्यों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के एक बेल टॉप कलाकार डॉक्टर विवेक जब काउंसिल समारोह और पंडित चक्रवीर शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला को प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभ्रम हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का पर्चम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रथम अत्यंत आवाज है।
1: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padmashri Pandit Urhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Sri Onkar Dabarkar and Srimati Kumudini Mundkur. And A grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnaraj Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal, and Sri Lanka to South Africa, Mauritius, and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
0: Dr. Vivek कर रहे हैं अपनी गायन की शुरुआत राय विष्णु से कर रहे हैं। विलंबित रिश्ता तिम्बारा काम में बंद है जिसके बोल है वन जाओरी तुम पे दूत रिश्ता तीन काम में है जिसके बोल है चमंगे भाई राय सिया दर्शन आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं
1: Dr. Vivek Karmade is commencing his recital with Raag 3. The Vilambit composition.

0: Michael, Robinda Kumbidar, Dr. Lucas, Nishan Sharma, Yukantam, Akashwani Chandarki, Tashikuti, Dr. Sashi, आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर विवेक कर्मा अकंपनिंग हिम वर रविंद्र किलेदार ऑन हारमोनियम एंड निशांत शर्मा ऑन तबला। दिस प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।

0: हमारे कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्ष बन रहा है ताकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन केरल माझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के नारायणपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूँ। मैं कामना करती हूँ कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियाँ, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तीसरी किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS देवागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का अनावरण करेंगे। इन पोर्ट में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड फोर्ट पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड फोर्ट पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के नलवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रूपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को 13 दिन में हाथी चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जा अभिनव सभ्यांगे गर्मी ना पहुंची को कल एयर में आई थी डीटीएच उपग्रह वाहन से कनेक्ट है। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।